0: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
1: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal.
0: The show that sets the prime time agenda.
1: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
0: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
2: We're getting visuals from inside of Vijay. They're arriving. He's, you know, he's got some sheaf of papers in his hand and meeting with the governor there. So inside visuals there, as you can see, at the governor's residence, at the you know, official residence there, with Vijay having arrived along with his team and giving and meeting with the governor, also you know, staking claim to form government. Remember, he has asked for 2 weeks' time to prove his majority in Tamil Nadu, and for the moment, the you know, the Congress is supporting TVK, and soon the other parties also expected to fall in place. So yes, Shiv, these are visuals we're getting of Vijay arriving at the governor's residence, meeting with the governor. Quite something for somebody who started a party just 2 years ago, who, you know, I have to admit, many of us thought that, oh, he'll get a proportion of the votes, but let's see how many seats that translates into to get 107 MLAs in place. Absolutely incredible.
3: NDTV saw the wave categorically, Gargi. It was something that we reported on relentlessly. It was something our reporters on the ground sensed as well. These pictures, first and exclusive on NDTV, of Vijay at the governor's house are hugely symbolic. This is the one of many images that we're going to see between now and tomorrow at the oath-taking ceremony where I'm standing right now. But those images, those papers in Vijay's hand, the meeting with the governor who spoke to Vasudha before, you know, that conversation with Vijay, all of it aligns right now. The magnificence of the Vijay mandate means, you know, 2 weeks to prove your majority, you know, is going to be more than sufficient. Those conversations are happening thick and fast right now. I hear they're happening on instant messaging apps. They're happening over calls. You know, emails are being sent for, you know, a record of these conversations taking place between the Congress and the TVK, the TVK and the...
4: Mr. Ghosh, what are your reaction, your first reaction to this horrific murder that is being reported from Madhyamgram today? Shivendu Adhikari's PA shot dead at close range.
5: This is very, very bad incident. We strongly condemned. This is very, very bad incident. Iska pura jhanjona chahiye. Police ya court monitored CBI, jo bhi iska piche ho, jo bhi iska piche ho, जिस लोग ये इसका हाथ है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और तुरंत आइडेंटिफाई करना चाहिए. भाजपा लीडर्स जो आरोप लगा रहा है, हम उसको सेंटिमेंट को समझ रहा है, वो पॉलिटिकली आरोप लगा रहा है, लेकिन टीएमसी अपने जो स्टेटमेंट है वो रिलीज कर चुका है. वी आल्सो स्ट्रांगली कंडेम्ड. ऐसा होना नहीं चाहिए. अभी तो स्टेट इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रपति जी या गवर्नर साहब का अंडर में है, तो पूरा पुलिस या कोर्ट मॉनिटर सीबीआई जो भी हो, जो लोग किया, क्यों किया, मोटिव क्या है, ये पूरा जो भी हो, आई रिपीट, जो भी हो उसका पकड़ना चाहिए.
4: आपको क्या लगता है क्या मोटिव है?
5: देखिए, अभी बोलना मुश्किल है क्योंकि ये जस्ट हम लोग ये इंफॉर्मेशन आ चुका है. ये तो पुलिस डिटेल में बता सकता है. इसका साथ पॉलिटिक्स का कनेक्शन कितना है या कौन किया है, क्यों किया है, वो इंफॉर्मेशन के बिना इसके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं है. लेकिन जो भी हुआ, बहुत बुरा हुआ. वी स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट.
4: जी, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि साफ साफ जो उंगली है वो आप पे उठाई जा रही है, दिव्येंदु अधिकारी हो या फिर दो जो विधायक हैं भाजपा के जिनसे हमने बात की है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अब तृणमूल कांग्रेस अराजकता का माहौल बनाना चाहती है पश्चिम बंगाल के अंदर.
5: देखिए, हम उसका सेंटिमेंट समझ सकते हैं. उसका उसका एक कॉलिग के साथ ऐसा हुआ है. तो अभी ये इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है, ये पॉलिटिकल ब्लेम, तो उसका सेंटिमेंट मैं समझ रहा हूँ. लेकिन तृणमूल कांग्रेस का एक स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं इतना बोल सकता हूँ, इसके साथ तृणमूल, इसके पीछे तृणमूल नहीं है, तृणमूल क्यों करेंगे? और तृणमूल का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी हमारा हैंडल से रिलीज कर दिया गया।
4: पर किसी को क्या फायदा हो सकता है कि एक यू नो टू किल एन इनोसेंट

0: person, somebody who was so close to Shivendu Adhikari, who would gain from carrying out such a murder? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये कोई spur of the moment crime of passion नहीं है. If I'm sure you've seen by now that he was shot at close range, he was tailed by people. People knew where he was sitting, so his car was identified. ये एक target के लिए.
1: ये I heard that the whole incident. But ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन किया, motive क्या था, ये तुरंत पकड़ना चाहिए. पुलिस हो या कोर्ट मॉनिटर सीबीआई हो, जो भी हो, ये कौन लोग किया, क्यों किया. इलेक्शन तो हो चुका है, अभी तो न्यू गवर्नमेंट का ओथ टेकिंग का प्रोग्राम चल रहा है. इसके अंदर में ऐसा इंसिडेंट हम सोच भी नहीं सकते. ये कैसे हो रहा है, कौन लोग कर रहा है, क्यों किया है, बहुत बुरा किया है.
0: पर आपको अजीब नहीं लगता कि एट अ टाइम व्हेन देयर वाज सच हाइटेंड विजिल, जब सब कुछ पीसफुली निकल गया, तो ऐसा मर्डर हो जाए? कोई क्यों सुविंदु अधिकारी के पीए का मर्डर कोई क्यों करेगा?
1: ये ही तो क्वेश्चन है. जो इलेक्शन हो गया, अभी भाजपा का गवर्नमेंट का वोट चेकिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है, इस टाइम में उनका पीए को कौन मारेगा? और उसका मारा तो है जरूर, इतना बुरी तरह से मारा है, तो कौन मारा, उसका मोटिव क्या था, क्यों कर दिया? ये तो पूरा अभी तुरंत इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, नहीं तो ये तो एक मिसकम्युनिकेशन, एक सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट हो जा रहा है भाजपा वालों को, कि पूरा ये प्रॉपरली तो तुरंत ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? जब इलेक्शन का मेन पार्ट खत्म हो गया है, न्यू गवर्नमेंट का ओथ टेकिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है, इस टाइम में इतनी बुरी तरह से ये ब्रूटल मर्डर, ये कैसे हो सकते है? हम लोग फिर से मैं कह रहा हूँ, अभी तो डिटेल इंफॉर्मेशन पूरा नहीं है ना, अभी बहुत बुरा हुआ और भाजपा लीडर्स का सेंटिमेंट भी हम समझ रहा हूँ. तो उसका कॉलिग का ऐसा ब्रूटल मर्डर हुआ, तो उसको तो इमोशनल आउटबर्स्ट, तो देखिए ये तो ह्यूमन है, होगा ही, लेकिन ये कौन लोग किया, क्यों किया, ये तो पूरा अभी एक पूरा इन्वेस्टिगेशन तुरंत होना चाहिए.
0: Because this is not just about one murder. Because पिछले दो दिनों में जितने भी अभी attacks हुए हैं, whatever attacks have taken place in West Bengal, a very startling claim was made by the BJP late this evening, where they said that Trinamool people are donning BJP uniform, or they are, you know, putting BJP safa, they are putting tilak, and they are carrying out these attacks. So they are accusing your party of deliberately trying to create violence and unrest in West Bengal.
1: ये हमारा नहीं, हमारा पास वीडियो भी है. वो देखिए, यहाँ पर हमारा वर्कर्स की भी मौत हो गया है, तीन आदमी का मौत हो गया है. मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हमारा आदमी का भी मौत हुआ है, लेकिन ये जो हुआ है, जो जिस तरह मोडस ऑपरेंडी जो था, जो प्री प्लान्ड वे से जो हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, बहुत बुरा हुआ. हर एक हमारा जो वर्कर्स का मौत हुआ है वो भी बहुत खराब है, लेकिन आज ये इस तरह वो शुभेंदु जी का जो सेक्रेटरी का मर्डर हुआ, वो कौन करेगा, मोटिव क्या है? उसका साथ डायरेक्ट पॉलिटिकल तो कोई क्लैश का बात नहीं था, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है.
0: ओके, absolutely, it is very, very important that this be found out and those people be dragged over the coals and be thrown into jail. Kunal Ghosh though says that there is absolutely no reason to suspect Trinamool Congress. They have also asked for a central probe to find out who is behind this. But again, we reiterate at NTV, we have only stuck to the facts. And at this point, while there are protests, there are allegations, calm minds must prevail. There should be no flare up, because that is exactly what someone who has executed a murder of this kind would want. Thanks very much, Shreyasi, Ritik Mondal and Saurabh, for having stayed with us through this entire coverage of the biggest story of the day coming out of West Bengal. Thanks for watching. Taking a quick break.
2: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management, an assurance of courage given by Amit Shah ji to all the

0: people. We are with you.
1: Illegal migrant. ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड to bring back the confidence of industry.
6: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
9: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
10: आज के की खावें झालमुड़ी ना माचेर झोल।
8: How will you celebrate?
11: झालमुड़ी माचेर झोल विद रसगुल्ला।
12: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
13: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
14: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
8: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
15: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
16: I think that was not the only incident.
17: Tobe poran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड to bring back the confidence of industry.
6: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
9: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
10: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचे झोल।
8: How will you celebrate?
9: झालमुड़ी माचे झोल विद रसगुल्ला।
11: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
12: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
13: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
8: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
14: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
15: I think that was not the only incident.
16: Tobi poran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।

टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी

0: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरी राजा।
2: सबका राजा प्योर मसाला।
3: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
4: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
5: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
6: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है, ओडिशा का या बंगाल का?
7: ओडिशा का है, जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
8: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
9: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
10: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
1: Well, let's shift our attention to Tamil Nadu. This hour, we're understanding an important update

0: months. And police investigators say two bikes and one car were used by the accused during this operation. As far as Chandranath Rath is concerned, he was shot at point-blank range with three rounds of bullets. He was responsible for political coordination for Shuvendu Adhikari, as we have highlighted. And the Trinamool Congress has released a statement condemning this killing, calling for a court-monitored CBI probe and strict action. We've got crucial political reactions lined up for you this morning. Listen in.
1: दो तीन दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान्ड मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर है हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हत्या हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग के पास नहीं है 15 साल का महाजंगल राज का ये कुफल का नतीजा है बीजेपी सरकार जब पिकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा
2: पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर आप धैर्य रखिए कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा लीगली जो प्रोसीड्योर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा एक भी नहीं बचेंगे
3: केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है इस क्राइम में जो गाड़ी फोर व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है उसको टेम्पर किया गया है हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है बाद बाकी वहां पर जो आई विटनेस थे और जो जो इविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है
4: जो घटना हुआ था ना उससे पहले वो गाड़ी मेरे को ही क्रॉस किया था
5: कहाँ थे वो
4: मेरे जस्ट मतलब रेड लाइट है पीछे एक रेड लाइट है उस रेड लाइट में उनका गाड़ी क्रॉस हुआ है उनका गाड़ी थोड़ा स्पीड ज़्यादा था मेरा गाड़ी का स्पीड कम था तो वो उन्होंने मेरा गाड़ी होगा 30-40 का स्पीड होगा 50 का स्पीड होगा उनका होगा 60 का स्पीड वो क्रॉस करके आए लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे आए तब जाकर के उनका गाड़ी अचानक बंद हो गया और अचानक जैसे बंद हो गया उसके मतलब सेकेंड नहीं लगा होगा गोली की आवाज़ सुना
5: मैं चलाने वाले कौन थे किस गाड़ी
4: एक एक बाइक में था एक बाइक में एक बंदा था जो साइड से आया था जैसे ये गाड़ी है ना एकदम जैसे गाड़ी खड़ा था साइड से आकर के एकदम एक पैर रखा जमीन पे और सीधा एकदम खड़े होकर चलाया
6: इट इज पैल्पेबली क्लियर दैट किलिंग चंद्रनाथ बैनर्जी डेफिनेटली इज टू गिव अ मैसेज टू शुभेंदु अधिकारी जी एंड दैट मैसेज इज लाउड एंड क्लियर Let's see what we can do. We are still that much powerful to do anything and everything we want. Absolutely pre-planned thing. Because what I heard from the local people also when I went to this spot and the person who was there in the car, he was also there. I asked him what had happened exactly. He said a car was standing in front of Chandradas' car and there was no driver inside it. Meaning thereby that the car was there to block the car. Suddenly people in bikes came and they suddenly put the arms and the weapon and they shot him from point blank range.
7: Chandro was a person I have worked with very closely over the years in different political campaigns. His was not an accidental death. It was a pre-planned political assassination. It was a murder whose fingerprints, I'm sure, will read right to the top of a defeated party, which cannot accept, which cannot reconcile itself to a devastating defeat in the elections.
8: नहीं ये घटना हम सोचे थे कि कोई गोली बंदूक नहीं आएगा बंद हो गया लेकिन अभी भी जो लोग चुनाव को पहले गड़बड़ नहीं कर पाए अभी कर रहे हैं पुलिस को एकदम कड़क स्टेप्स लेना चाहिए कोई भाई भतीजा रंग राजनीति नहीं देखना चाहिए कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए आप अपना बिहेवियर चेंज करिए उल्टा हो रहा है हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है थाना बुलाकर मारपीट किया जा रहा है ये पुलिस का काम नहीं है आप बदलो सरकार बदल गया है
9: भाई

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
6: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
7: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
8: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
9: ओडिशा का है। महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
10: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
11: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
12: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
13: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
14: Well, let's shift our attention to Tamil Nadu. This hour, we're understanding an important update coming in from Tamil Nadu, where there could be a split in the AIADMK over backing TVK. That's the big question emerging at this hour, as Shanmugam has shifted the pro-Vijay AIADMK MLAs to a resort. That's right, the pro-Vijay AIADMK MLAs have now been shifted to Puducherry. That's the latest update that we have for you at this hour, as resort politics seems to have begun in AIADMK over support to TVK's Vijay. Now, EPS versus team, there's been a face-off, there's been a political flashpoint over backing Vijay or not to form the government. Remember, like I said, the AIADMK seems to be divided on whether to support the TVK's Vijay or not. Well, my colleague Vijay Gopal joins us on the broadcast with more updates coming in. Vijay, of course, the past couple of days we've been hearing of many reports suggesting that there could be a split in the AIADMK, especially with regards to backing the current government formation or not.
15: That's right. Yesterday there was a crucial meeting happened at residence of AIADMK chief Edappadi K. Palaniswami, where all newly elected AIADMK MLAs were part of the meeting. First, it was planned at the party headquarters, but all of a sudden the meeting got shifted to residence because according to sources we heard.

0: All right, we sincerely apologize for that. We're just fixing the audio. But currently, police investigators are investigating all aspects. Most say this is professional criminal planning, considering that fake number plate is also a major lead, as Saurabh Gupta was highlighting. We are, of course, lining up that eyewitness reaction for you and getting the latest on how the police has seized the four-wheeler and how it was allegedly used during the operation as well. But you know, this shocking incident of post-poll violence in Bengal, it is a chilling political murder. It sent shockwaves through West Bengal just days after the state witnessed one of its most dramatic election verdicts in decades. Chandranath Rath, the personal assistant and key political aide of senior BJP leader Shubhendu Adhikari, was shot dead late last night in Madhyam Gram in West Bengal. And investigators are increasingly believing this was a carefully planned attack, considering what the evidence is pointing towards so far. Shubhendu Adhikari, though, has directly blamed the Trinamool Congress, calling the murder pre-planned and linking it to what he described as 15 years of Maha Jungle Raj. Meanwhile, police sources say Chandan Rath's vehicle was intercepted after being tailed by bike-borne assailants. The attackers allegedly knew the route, they knew the target, and possibly even knew the escape plan beforehand. And officers now say two motorcycles and one four-wheeler were used during this operation. The car, though, has been seized, as we have earlier reported. Police has confirmed that the car was using fake number plates, a fake chassis number as well. The police have contacted the real owner of the vehicle, being traced as far as Siliguri. The TMC, though, has released a statement condemning the killing of Shivendu's close aide, calling for a court-monitored CBI probe and strict action. We've got all the crucial political reactions lined up for you. Listen in.
1: दो तीन दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान्ड मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हत्या हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग के पास नहीं है 15 साल का महाजंगल राज का ये कुफल का नतीजा है बीजेपी सरकार जब पिकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा
2: पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर आप धैर्य रखिए कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा लीगली जो प्रोसीड्योर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा एक भी नहीं बचेंगे
3: केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है इस क्राइम में जो गाड़ी फोर व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है उसको टेम्पर किया गया है हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है बाद बाकी वहां पर जो आई विटनेस थे और जो जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है
4: जो घटना हुआ था ना उससे पहले वो गाड़ी मेरे को ही क्रॉस किया था
5: कहाँ थे वो
4: मेरे जस्ट मतलब रेड लाइट है पीछे रेड लाइट है उस रेड लाइट में उनका गाड़ी क्रॉस हुआ है उनका गाड़ी थोड़ा स्पीड ज़्यादा था मेरा गाड़ी का स्पीड कम था तो उन्होंने मेरा गाड़ी होगा 30-40 का स्पीड होगा 50 का स्पीड होगा उनका होगा 60 का स्पीड वो क्रॉस करके आए लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे आए तब जाकर के उनका गाड़ी अचानक बंद हो गया और अचानक जैसे बंद हो गया उसके मतलब सेकेंड नहीं लगा होगा गोली की आवाज़ सुनाए
5: मैं चलाने वाले कौन थे किस गाड़ी
4: एक एक बाइक में था एक बाइक में एक बंदा था जो साइड से आया था जैसे ये गाड़ी है ना एकदम जैसे गाड़ी खड़ा था साइड से आकर के एकदम एक पैर रखा जमीन पे और सीधा एकदम खड़े होकर गोली चलाया
6: इट इज पैल्पेबली क्लियर दैट किलिंग चंद्रनाथ बैनर्जी डेफिनेटली इज टू गिव अ मैसेज टू शुभेंदु अधिकारी जी एंड दैट मैसेज इज लाउड एंड क्लियर That see what we can do. We are still that much powerful to do anything and everything we want. Absolutely pre-planned thing. Because what I heard from the local people also when I went to this spot and the person who was there in the car, he was also there. I asked him what had happened exactly. He said a car was standing in front of Chandradas' car and there was no driver inside it. Meaning thereby that the car was there to block the car. suddenly people in bikes came and they suddenly put the arms and the weapon, and they shot him from point blank range.
7: Chandro was a person I have worked with very closely over the years in different political campaigns. His was not an accidental death. It was a pre-planned political assassination. It was a murder whose fingerprints, I'm sure, will read right to the top of a defeated party, which cannot accept, which cannot reconcile itself to a devastating defeat in the elections. But he
8: also... नहीं, ये घटना हम सोचे थे कि कोई गोली बंदूक नहीं आएगा, बंद हो गया, लेकिन अभी भी जो लोग चुनाव को पहले गड़बड़ नहीं कर पाए अभी कर रहे हैं। पुलिस को एकदम कड़क स्टेप्स लेना चाहिए, कोई भाई भतीजा रंग राजनीति नहीं देखना चाहिए, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। आप अपना बिहेवियर चेंज करिए, उल्टा हो रहा है। हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, थाना बुलाकर मारपीट किया जा रहा है, ये पुलिस का काम नहीं है। आप बदलो, सरकार बदल गया है।
9: देखिए भाई, अभिषेक बनर्जी ने यह हत्या करवाई है, अभिषेक बनर्जी ने यह हत्या करवाई है, और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले ना हो लेकिन हम तुम्हें तुम्हारे ऊपर भारी हैं। लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं, इसका जवाब मिलेगा।
10: तृणमूल कांग्रेस एक संत्रासवादी दल, मैं पहले कहा था इस दल का पॉलिटिकल स्वीकृति बातिल करना चाहिए। पूरा गुंडा और समाज विरोधी और संत्रासवादी आधारित एक पार्टी। इन्होंने बंगाल से सफाया हो गया, भवानीपुर से ममता बनर्जी सफाया हो गया, और अभी त्याग पत्र नहीं देंगे ऐसा नाटक शुरू किया। जब देखा कुछ कोई काम, कोई पदक्षेप, कोई रंग नहीं ला रहा है, तब इन्होंने परिकल्पित रूप से शुभेंदु अधिकारी का पीए को टारगेट बनाया।
0: Well, Shubhendu Adhikari was not with Chandranath Rath at the time of this incident. This is what the BJP leader's brother, Dibyendu Adhikari, told NDTV. He sought a probe by the Central Bureau of Investigation. Listen in to what he said about the investigation, followed by a reaction from Trinamool Congress's Kunal Ghosh too.
11: Dibyendu Adhikari is with us on the phone line. Dibyendu da, kya bata sakte hain ki exactly kya hua, ghatna kahan hui, kaise hui?
12: वो जो निजाम पैलेस से शुभेंदु अधिकारी जी का कफीला निकल गया कंटाई के लिए, रेसिडेंस के लिए, उसके बाद वो निकला था, उसको रेक किया गया था कई दिन से। भवानीपुर जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बढ़िया रोल प्ले किया था। आई एम एप्रिहेंडिंग दैट टीएमसी गूंस आर एक क्या है, मैं ये मांग करता हूँ कि अभी सीबीआई जांच का जांच दिया जाए, और इनका सीएफएसएल से फॉरेंसिक लेवल से इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और एम्स कल्याणी में इसको पोस्टमार्टम के लिए भी बंदोबस्त करना चाहिए।
11: जी, आप कह रहे हैं कि ये जो राजनीतिक राइवलरी है उसकी वजह से हुआ है, पर कहाँ पे हुआ है, किसने मारा है, कितने लोग थे, क्या मोटरसाइकिल पे आए थे, कुछ अभी डिटेल्स आपको पता चली है?
12: कार था भाई, स्कॉर्पियो कार था, ड्राइवर और दोनों आदमी था, वो वहां का रहने वाला है।
11: अभी शुभेंदु जी किधर पे हैं?
12: He's on way to Madhyamgram on the spot along with our state president Mr. Somik Bhattacharya.
11: Was Shubhendu Adhikari also supposed to be in this car along with Chandranath?
12: No, Shubhendu Adhikari is not with his car.
11: नहीं, बट क्या उनको इस गाड़ी में ही रहना था? क्या ये शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी है जिसमें चंद्रनाथ भी अमूमन उनके साथ चलते थे?
12: चंद्रनाथ इसका पीए है, शुभेंदु जी वो चंद्रनाथ उसका खुद का कार में था।
11: अच्छा, वो अलग गाड़ी में थे। क्या आपको अभी कुछ डिटेल्स पता चल रही है कि कितने लोग थे, क्या वो मोटरसाइकिल?
12: डिटेल नहीं पता चला है। क्या
11: वो गाड़ी का पीछा कर रहे थे?
12: हाँ, गाड़ी का पीछा कर रहे थे।
11: जो चंद्रनाथ हैं, वो क्या शुभेंदु जी से मिलने आ रहे थे?
12: नहीं, ऑफिस खत्म करके जब निजाम पैलेस से आ रहा था, ऑन वे टू कोंटाई, चंद्रनाथ मूविंग टुवर्ड्स हिज रेसिडेंस एट मध्यमग्राम,
11: वो कोंटा आ रहे थे
12: जी,
11: तो शुभेंदु जी को तो कोई खतरा नहीं है, उनको तो कोई आसपास नहीं थे ना, वो जहाँ पे अटैक हुआ है उसके आसपास तो नहीं थे वो
12: जी?
11: जिस जगह पे हमला हुआ है उसके आसपास शुभेंदु अधिकारी तो नहीं थे क्या? आगे पीछे किसी गाड़ी में तो नहीं थे वो?
12: आसपास नहीं थे, आसपास नहीं।
11: क्या किसी तरीके की धमकी मिली थी पिछले कुछ दिनों में शुभेंदु जी को या फिर चंद्रनाथ?
12: आई एम नॉट एबल टू सेव यू मोर मैडम, काइंडली एक्सक्यूज मी, आई एम ऑन वे टू चंद्रनाथ रेसिडेंस।
11: Okay, I completely understand. Thank you very much, Mr. Dibendu Adhikari. That is Shubhendu Adhikari's brother, also a member of parliament.
13: This is very, very bad incident. We strongly condemned. This is very, very bad incident. Iska pura jhanjona chahiye. Police ya court monitor CBI, jo bhi iska piche ho, jo bhi iska piche ho, जिस लोग ये इसका हाथ है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और तुरंत आइडेंटिफाई करना चाहिए। भाजपा लीडर्स जो आरोप लगा रहा है, हम उसको सेंटिमेंट को समझ रहा है, वो पॉलिटिकली आरोप लगा रहा है, लेकिन टीएमसी अपने जो स्टेटमेंट है वो रिलीज कर चुका है। वी ऑल्सो स्ट्रांगली कंडेम्ड, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी तो स्टेट इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रपति जी या गवर्नर साहब का अंडर में है, तो पूरा पुलिस या कोर्ट मॉनिटर सीबीआई जो भी हो, जो लोग किया, क्यों किया, मोटिव क्या है, ये पूरा जो भी, आई रिपीट, जो भी हो उसका पकड़ना चाहिए। अभी बोलना मुश्किल है क्योंकि ये जस्ट हम लोग इंफॉर्मेशन आ चुका है, ये तो पुलिस डिटेल में बता सकता है। इसका साथ पॉलिटिक्स का कनेक्शन कितना है या कौन किया है, क्यों किया है, वो इंफॉर्मेशन के बिना इसके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। वी स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट। हम उसका सेंटिमेंट समझ सकते हैं, उसका एक कॉलिग के साथ ऐसा हुआ है। तो अभी ये इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है, ये पॉलिटिकल ब्लेम, तो उसका सेंटिमेंट मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक तृणमूल कांग्रेस का एक स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं इतना बोल सकता हूँ, इसके साथ तृणमूल, इसके पीछे तृणमूल नहीं है, तृणमूल क्यों करेंगे? और तृणमूल का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी हमारा हैंडल से रिलीज कर दिया गया।
0: Well, this chilling late-night shooting in West Bengal has now triggered serious questions about political violence, security failures, and whether a carefully planned operation was executed with precision. This just days after the state's dramatic change in power. You see, around 10:30 p.m., we're told, in Madhyam Gram, Chandranath Rath, a close aide to senior BJP leader Shubhendu Adhikari, was traveling in a car when, according to investigators, bike-borne assailants began tailing the vehicle. What happened next is now at the center of a major police investigation. Sources say the car was allegedly blocked near Duharia Junction. The gunmen reportedly forced the vehicle to stop before opening fire from close range. And Chandranath Rath was hit fatally. The attackers then escaped on motorcycles. And investigators later recovered an abandoned four-wheeler believed to be linked to this operation. But you have to listen carefully to the details that are emerging from the ground. Police sources are categorically saying the shooting pattern suggests planning and precision. Officers believe the attackers knew exactly where Mr. Rath was seated inside this car. Bullets reportedly struck vital areas, as my colleague Tanushka Datta was highlighting. Investigators are now examining CCTV footage, vehicle movements, and whether reconnaissance was actually carried out in advance. And the political backdrop, well, that makes this even more explosive. This killing comes immediately after BJP's sweeping victory in Bengal and amid already rising allegations of post-poll violence. Shubhendu Adhikari has urged supporters not to retaliate, but the BJP is openly questioning whether this was targeted political violence, as you've heard in the reactions we've lined up this morning as well. It is crucial to note that the Trinamool Congress has condemned the killing and demanded a court-monitored CBI probe. Meanwhile, even as investigators intensify this probe into the murder of Shubhendu Adhikari's close aide, Chandranath Rath, several critical questions remain unanswered this morning. And you know, each one actually carries serious political and serious implications for the state of West Bengal. First, who exactly carried out this shooting. Police say the attackers operated with precision. They used multiple vehicles and escaped quickly after the attack, which points towards planning. But investigators still have not publicly identified the shooters or the network behind them. Secondly, was Chandranath Rath himself the intended target, or was the attack meant as a message aimed at someone bigger within Bengal's shifting political landscape? Remember, Mr. Rath was not just any ordinary staff member. He handled political coordination for Shuvendu Adhikari, one of the BJP's most powerful figures as far as West Bengal is concerned. And third, what was the motive? Was this political intimidation? Was it organized criminal execution? Or something linked to Bengal's increasingly tense post-election atmosphere? Because right now, investigators say all angles remain open. And finally, perhaps the most politically sensitive question of all, was this killing designed to vitiate the atmosphere immediately after a historic election verdict? Because Bengal, as you know, is already navigating a volatile transition of power. Any targeted political killing at this moment, it risks deepening fear, mistrust, and confrontation between rival camps before the new government even settles in. All right, Saurabh Gupta is just going to be joining us in a moment, as this entire case has triggered serious questions about political violence, about the security failures, and whether a carefully planned operation was actually executed with precision. Because so far as we speak, the murderers are still on the loose. Investigators are currently looking for those who carried out this attack, which happened around 10:30 p.m. in Madhyam Gram. Saurabh Gupta has also spoken to eyewitnesses, and he now joins us live at the moment. Saurabh, investigators say this was a planned operation, but the most basic question still remains unanswered, right? Who exactly pulled the trigger and who coordinated this attack? What are investigators saying this morning?
14: Well, the investigation currently is focusing on who could be the assailants, who did this, who's behind this crime, all of that. In fact, this is something that obviously is part of the investigation, and the police are on the trail. In fact, we spoke to Mr. Sharkar, who's also here, an eyewitness who was here, yesterday when this happened. In fact, he was the one who first tried to find out if Mr. Chandranath Rath is still alive or not. But you can see the police have completely cordoned off this area. Completely, and they are of course ensuring that this area is completely cordoned off, and nobody enters this area at all. Now the CCTV, the security personnel is of course here. The security personnel in this building is someone who witnessed this. In fact, the police are ensuring that there's no one. In fact, we'll try and get in a word from people who, of course, are locals here. We'll try and see if we can get more eyewitnesses in this place. But at this point, it seems that the security guard is Gaurav, I'll ask you to show some footage here of, this whole, the police, you can see, watching the CCTV footage here. These are, policemen who are watching CCTV footage in this building. And these are, of course, live pictures of the police trying to figure out from the CCTV footage of the incident. That's back to you in the studio.
0: As with the latest from Ground Zero, we will, of course, revert to you for regular updates.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: इकोनॉमी बिजनेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी नॉइज फिल्टर्ड नंबर्स डिकोडेड इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ वी कनेक्ट द डॉट्स योर डेली एज योर ग्लोबल एडवांटेज इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी वीक नाइट्स ऑन एनडीटीवी प्रॉफिट।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
7: India's unshakable news habit, NDTV.com, is India's number one English news website.
8: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
9: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
10: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
11: This car makes no sense, yet it makes every sense.
12: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
13: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
2: इकोनॉमी, बिजनेस, वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, नॉइज फिल्टर्ड, नंबर्स डिकोडेड, इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू, फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ, वी कनेक्ट द डॉट्स, योर डेली एज, योर ग्लोबल एडवांटेज। इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी, वीक नाइट्स on NDTV Profit.
3: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, of Saturday.
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: इकोनॉमी, बिजनेस, वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, नॉइज फिल्टर्ड, नंबर्स डिकोडेड, इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू। फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi, weeknights on NDTV Profit.
5: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
6: The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
6: Join me, Aisha Sehgal, on

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर प्योर मसाला।
5: इकोनॉमी, बिजनेस, वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, नॉइज फिल्टर्ड, नंबर्स डिकोडेड, इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू। फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ, वी कनेक्ट द डॉट्स। योर डेली एज, योर ग्लोबल एडवांटेज। इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी, वीक नाइट्स ऑन एनडीटीवी प्रॉफिट।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
7: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
8: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal,
7: the show that sets the prime time agenda.
8: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
7: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
9: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
10: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
11: And the big developing story that we're breaking here on NDTV is that actor Vijay has reached Tamil Nadu Governor Rajendra Arlikar's residence once again. He's inside that residence. NDTV has told you that conversation

0: is to stake claim for the second time in less than 24 hours to form what will be the first Vijay Sarkar here in Tamil Nadu. I'm standing in front of the state secretariat. In fact, Sam Daniel, our Chennai bureau chief, is with me live from outside the Lok Bhavan. I'll be going to our other reporters, Deepak, Vijay, Radhika, in just a moment. But Sam, quickly coming to you first. When are we expecting this meeting inside the Lok Bhavan to end? It is crucial because it could go one way or the other. Either everything is smooth sailing, Vijay has been able to convince the governor of what he was not convinced of yesterday, which is the numbers and the ability to show his strength in the house, or it could...
1: Shifting focus to Bengal now, in a highly disturbing incident of post-poll violence in the state, Suvendu Adhikari's personal assistant Chandranath Ruff was shot dead in Mathiam Gram. Suvendu Adhikari has blamed Trinamool Congress for this and said that this is a pre-planned murder and a result of 15 years of Maha Jungle Raj. BJP workers are now protesting over the murder and have blocked the national highway in West Midnapore. As per sources, attackers arrived on motorcycles and appear to have known the escape route in advance. CCTV shots show the final moments before the car was attacked. Police has confirmed that the car has been seized and it was using a fake number plate. The police have now contacted the real owner of the vehicle. Suvendu's aide, Chandranath Ruff, was shot at point-blank range with 3 rounds of bullets. Chandra was responsible for political coordination for the BJP leader. The Trinamool Congress released a statement condemning the killing of Suvendu's close aide, calling for a court-monitored CBI probe and strict action.
2: So that is the body of Chandranath Ruff being proceeded and taken out for the post-mortem. Post-mortem is crucial for the investigation. We're giving you exclusive visuals here on NDTV, wherein the body of Chandranath Ruff is being taken for post-mortem report. Remember, last night he was murdered. This is Suvendu Adhikari's personal assistant that we're talking about here. As we're showing you her visuals on NDTV, this is the body of Chandranath Ruff right behind me being taken for the post-mortem. Chandranath Ruff's body is being taken for...
3: 9:30 time tha. अभी जल्दी हो जाएगा अभी हम बाइट
2: ऑल राइट सो दैट वाज द पर्सन हु विल बी कंडक्टिंग द पोस्टमार्टम हियर हु स्पोक टू एनडीटीवी एंड ही सेड दैट द पोस्टमार्टम विल बी स्टार्टेड शॉर्टली अराउंड 10 AM
4: मेरे सामने वही गाड़ी आपको दिखाई दे रही है जिस गाड़ी में चंद्रनाथ बैठे हुए थे WB32 इस गाड़ी का नंबर है और इस गाड़ी के ड्राइवर के बगल वाले सीट पर वो जस्ट थे सामने की सीट पर थे और पॉइंट ब्लैंक से उनके ऊपर गोली चलाई गई ये आप शीशे देख सकते हैं जो खिड़की है गाड़ी की उस शीशे को फाड़ते हुए जो बुलेट है वो सीधा चंद्रनाथ को जाकर लगती है 4 राउंड फायरिंग की गई थी जिसे बताया जा रहा है कि 3 गोलियां चंद्रनाथ को लगी है जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है और सीधा उन्हें इस अस्पताल में विवा सिटी अस्पताल जो कि बारासात में पड़ता है वहां उन्हें लेकर आया गया है लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में पोस्ट पोल वायलेंस जिस तरीके से अक्सर होता है उसका ये सीधा जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने ये गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी जो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ जो कि उनके बेहद ही करीबी थे और उनके साथ अक्सर रहते थे उनकी गाड़ी पर आज अटैक किया जाता है और जिस घटना में उनकी मौत हो जाती है उसको लेकर आप देखेंगे कि इस अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में जो भी जनता पार्टी के समर्थक हैं जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त मौजूद है
5: एक आदमी एक शख्स दौड़ते दौड़ते बोल गया जे गोली मार दिया गया हमने बोला किसको गोली मार दिया गया बोला वो देखो उधर गाड़ी पड़ा है गाड़ी के अंदर गोली मार के भाग गया तो हमने दौड़ के गया जाके देखा एक गाड़ी स्कॉर्पियो के अंदर 2 आदमी पड़ा है गोली से खून निकल रहा था और एक आदमी रो रहा था तो हमने बोला क्या हुआ तो बोला वो बोला जे गोली मार के भाग गया किसी ने तो हमने बोला जे बॉडी देखाओ हम पहचान पाता है कि नहीं शीशा दर्जा गाड़ी का कार का दर्जा खोलने के बाद हमने देखा जे वो पड़ा है उनका खून निकल रहा है तो अभी जिंदा था तो हमने बोला जे एक काम करो उनको हॉस्पिटल लेके जाओ हम पुलिस के
6: जो घटना हुआ था ना

0: उससे पहले वो गाड़ी मेरे को ही क्रॉस किया था।
1: कहाँ थे वो क्रॉस?
0: मेरे जस्ट मतलब रेड लाइट है, पीछे रेड लाइट है, उस रेड लाइट में उनका गाड़ी क्रॉस हुआ है। उनका गाड़ी थोड़ा स्पीड ज़्यादा था, मेरा गाड़ी का स्पीड कम था, तो उन्होंने, मेरा गाड़ी होगा 30-40 का स्पीड होगा, 50 का स्पीड होगा, उनका होगा 60 का स्पीड। वो क्रॉस करके आए, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे आए, तब जाकर के उनका गाड़ी अचानक बंद हो गया। और अचानक जैसे बंद हो गया, उसके मतलब सेकंड नहीं लगा होगा, गोली की आवाज़ सुना है।
1: मैं चलाने वाले कौन थे, किस गाड़ी?
0: एक बाइक में था, एक बाइक में एक बंदा था जो साइड से आया था। जैसे ये गाड़ी है ना, एकदम जैसे गाड़ी खड़ा था, साइड से आकर के एकदम एक पैर रखा जमीन पे और सीधा एकदम खड़े होकर गोली चलाया।
2: की शास्ति चाहिए?
3: আমি আর একজন মা, আমি চাইব না তাদের ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা যে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলের নেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল।
4: वो तो कानूनी बता पाएगा ना, कानून से ये रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ये साजिश रचा है, जिसने भी ये साजिश रचा है कड़ी से कड़ी सजा दी, जो साजिश को जिसने रचा है, और कोई भी बाद में जैसा साजिश नहीं रच। हाँ, कल 2 बजे तक बाद, कल दोपहर के 2 बजे तक दादा हम लोगों के साथ ही थे, चंडीपुर में ही थे, उनका घर का जो असेंबली है चंडीपुर वहाँ पर थे।
5: 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान्ड मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर है। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में, ये जो मर्मांतिक हत्या हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग के पास नहीं है। 15 साल का महाजंगल राज का ये कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब पिकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन, तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा।
6: पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, आप धैर्य रखिए। कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्योर है, सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचेंगे।
7: ये पश्चिम बंगाल एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड क्रिमिनल के लिए बन चुका है। पश्चिम बंगाल का स्थितियां जैसा ही है, कानूनी व्यवस्था ध्वस्त हो गया, ये टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टोटल एनर्की, ममता ऐसा स्थिति कर दिया आज इस राज्य का। अभी प्रधानमंत्री जी आने वाला है 2 दिन में, ओथ टेकिंग सेरेमनी है, हमारा राज्य का एक नया मुख्यमंत्री शपथ लेंगे उसी दिन, तो उसका पहले इतना बड़ा हादसा, तो किसी को मैसेज देने के लिए, किसी का साथ पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल ग्रज, जो भी बोलिए आप, उसी का कारण ये हुआ।
8: केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4-व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है, बाद बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है।
9: आधा दर्जन से ज्यादा तो TMC के कार्यकर्ता मार दिए गए हैं। सार्वजनिक मंचों से नफरत की आग फैलाई जा रही है। आप देख लीजिए बीजेपी के नेताओं के, मैं तो आपको स्पीच सुना सकता हूँ, तो परिस्थिति तो बेकाबू हो चुकी है।
10: ये बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग इसको कंडेम करते हैं, ब्रूटल मर्डर ऑफ चंद्रनाथ रथ इन मध्यम ग्राम, इसको हम कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं कि इसके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए, इंक्लूडिंग ए कोर्ट मॉनिटर्ड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
6: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, on Saturday.
5: The show that sets the prime time agenda.
6: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
5: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
8: We've got some exclusive pictures from the resort in Puducherry.

0: Welcome back. Now, news from West Bengal, where there's tension and security has been increased after post-poll violence. And Suvendu Adhikari's personal assistant, Chandranath Rath, was shot dead last night. This was in Madhyam Gram. Suvendu Adhikari has blamed the Trinamool Congress for the killing and said that this was a pre-planned murder and a result of 15 years of Maha Jungle Raj. BJP workers are protesting over the murder. They've blocked National Highway in West Midnapur. And according to sources, the attackers arrived on motorcycles and appeared to have known the escape route in advance. CCTV shots show that the final moments before the car was attacked, police has confirmed that the car was seized and it was using a fake number plate. The police have also got in touch with the real owner of the vehicle. Suvendu's aide, Chandranath Rath, was shot at point-blank range with 3 out of 4 bullets that hit him, causing his immediate death. Chandranath was a significant person who was responsible for political coordination for the BJP leader. The Trinamool Congress released a statement condemning the killing of Suvendu's close aide, calling for a court-monitored CBI probe and strict action. Piecing it all together, NDTV's Saurabh Gupta, Tanushka and Raman are, you know, getting all the big reactions. Let's also listen into what the family is saying and how easy was it for the assailants to get away.
1: एक आदमी एक शख्स दौड़ते दौड़ते बोल गया जे गोली मार दिया गया, गोली मार दिया गया। हमने बोला किसको गोली मार दिया गया? बोला वो देखो उधर गाड़ी पर आया, गाड़ी के अंदर गोली मार के भाग गया। तो हम दौड़ के गया, जाके देखा एक स्कॉर्पियो के अंदर दो आदमी पड़ा है, गोली से खून निकल रहा था और एक आदमी रो रहा था। तो हमने बोला क्या हुआ? तब बोला वो बोला जे गोली मार के भाग गया किसी ने। तो हमने बोला जे बॉडी दिखाओ, हम पहचान पाता है कि नहीं। शीशा दर्जा, गाड़ी का कार का दर्जा खोलने के बाद हमने देखा जे वो पड़ा है, उनका खून निकल रहा है, तभी जिंदा था। तो हमने बोला जे एक काम करो, उनको हॉस्पिटल लेके जाओ, हम पुलिस के।
2: जो घटना हुआ था ना, उससे पहले वो गाड़ी मेरे को ही क्रॉस किया था।
3: कहाँ थे वो?
2: मेरे जस्ट मतलब रेड लाइट है, पीछे एक रेड लाइट है, उस रेड लाइट में उनका गाड़ी क्रॉस हुआ है। उनका गाड़ी थोड़ा स्पीड ज़्यादा था, मेरा गाड़ी का स्पीड कम था। तो उन्होंने, मेरा गाड़ी होगा 30-40 का स्पीड होगा, 50 का स्पीड होगा, उनका होगा 60 का स्पीड। वो क्रॉस करके आए, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे आए, तब जाकर के उनका गाड़ी अचानक बंद हो गया। और अचानक जैसे बंद हो गया, उसके मतलब सेकेंड नहीं लगा।

0: होगा, गोली गोली की आवाज सुना है।
1: चलाने वाले कौन थे, किस गाड़ी?
0: एक बाइक में था, एक बाइक में एक बंदा था जो साइड से आया था। जैसे ये गाड़ी है ना, एकदम जैसे गाड़ी खड़ा था, साइड से आकर के एकदम एक पैर रखा जमीन पे और सीधा एकदम खड़े होकर गोली चलाया।
2: की शास्ति चाहिए छी?
3: আমি একজন মা, আমি চাইব না তাদের ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা যে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দল নেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল।
4: ও তো कानून ही बता पाएगा ना, कानून से ये रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ये साजिश रचा है। जिसने भी ये साजिश रचा है कड़ी से कड़ी सजा दी, जो साजिश को जिसने रचा है, और कोई भी बाद में इस जैसा साजिश नहीं रचा। कल 2 बजे तक बाद हुआ, कल दोपहर के 2 बजे तक दादा हम लोगों के साथ ही थे, चंडीपुर में ही थे, उनका घर का जो असेंबली है चंडीपुर वहाँ पर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
6: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal.
5: The show that sets the prime time agenda.
6: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
5: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: वी've गॉट सम एक्सक्लूसिव पिक्चर्स फ्रॉम द रिजॉर्ट इन पुदुचेरी वेयर 30 AIADMK MLAs रिपोर्टेडली विदाउट द कंसेंट ऑफ EPS हैव गॉन एंड लॉज देमसेल्व्स। NDTV's Ritu इज ऑन द ग्राउंड एंड शी हैज ऑब्टेन्ड दीज इमेजेस दैट वी've गॉट फ्रॉम द ग्राउंड। फर्स्ट पिक्चर्स ऑफ द AIADMK MLAs इन पुदुचेरी at this point of time. So I just wanted to put that picture on air, exclusive to NDTV. First pictures of the AIADMK MLAs who may be inclined towards a handshake with the TVK. EPS, however, their leader is not convinced at this point of time. Vijay Gopal Muralidharan, our correspondent, is outside EPS's residence. I think he is still with me. Vijay,

0: Some call it feeling, we call it driving. The new Tygoon. Welcome to driving.
1: नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहां दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार।
2: With AI-powered systems like the DSU AI Factory, threats can be detected and countered in real time, protecting lives. Artificial intelligence is transforming industry and shaping the future. Behind every breakthrough lies one essential force, compute power. Dayananda Sagar University, we are building a next-generation AI ecosystem where powerful infrastructure meets bold ideas, shaping tomorrow's intelligence.

0: Afghani establishment. It once again requested for cessation of hostilities and commencement of talks. India agreed for cessation.
1: And use of indigenous technologies and platforms helped us to achieve politico-military objectives identified for the conflict. A year on, Sindoor stands as a victory of facts over false narratives and professionalism over antagonism. When India decides, India delivers decisively, responsibly, and on its own terms.
2: पहला भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़े निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।

0: ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि यह भारत सरकार के होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का जीवंत प्रमाण था, जहां पॉलिटिकल विल और मिलिट्री पावर ने आतंकियों पर एक साथ निर्णायक प्रहार किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय समन्वय, साहस और सटीकता के साथ यह सिद्ध कर दिया, जब आवश्यकता पड़ती है तो हमारी सेनाएं किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देना जानती हैं। यह ऑपरेशन इस बात का सबूत है कि नया भारत हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठता, बल्कि पक्की रणनीति, मजबूत संकल्प और पूरे सामर्थ्य के साथ दुश्मन को उसकी भाषा में ही जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया, जरूरत पड़ने पर भारत न तो समय देखता है और न ही कोई सीमा। भारत अपने द्वारा तय की गई समय सीमा में दुश्मनों को नष्ट नाबूद करने की ताकत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर केवल दुश्मनों पर जीत की कहानी नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रतीक है, जहां 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति हमारे सैनिकों के साहस में बदल जाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक संकल्प नहीं बल्कि हमारी सैन्य शक्ति का आधार बन चुका है। स्वदेशी तकनीक, अपने संसाधनों और अपने संकल्प के बल पर भारत आज न केवल अपनी रक्षा कर रहा है बल्कि दुश्मनों पर डिसाइसिव एज भी बना रहा है।
1: इंडिया हैज फेस्ड रिलेंटलेस टेरर अटैक्स फॉर ओवर 3 डेकेड्स। दीज अटैक्स हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान एज पार्ट ऑफ इट्स स्टेट पॉलिसी। Pakistan has recruited, trained, equipped and assisted terrorists to undertake attacks in India through terror organizations, including Lashkar-e-Tayyaba and Jaish-e-Mohammed.

0: ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि यह भारत सरकार के होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का जीवंत प्रमाण था, जहां पॉलिटिकल विल और मिलिट्री पावर ने आतंकियों पर एक साथ निर्णायक प्रहार किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय समन्वय, साहस और सटीकता के साथ यह सिद्ध कर दिया, जब आवश्यकता पड़ती है तो हमारी सेनाएं किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देना जानती हैं। यह ऑपरेशन इस बात का सबूत है कि नया भारत हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठता, बल्कि पक्की रणनीति, मजबूत संकल्प और पूरे सामर्थ्य के साथ दुश्मन को उसकी भाषा में ही जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया, जरूरत पड़ने पर भारत न तो समय देखता है और न ही कोई सीमा। भारत अपने द्वारा तय की गई समय सीमा में दुश्मनों को नष्ट नाबूद करने की ताकत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर केवल दुश्मनों पर जीत की कहानी नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रतीक है, जहां 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति हमारे सैनिकों के साहस में बदल जाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक संकल्प नहीं बल्कि हमारी सैन्य शक्ति का आधार बन चुका है। स्वदेशी तकनीक, अपने संसाधनों और अपने संकल्प के बल पर भारत आज न केवल अपनी रक्षा कर रहा है बल्कि दुश्मनों पर डिसाइसिव एज भी बना रहा है।
1: इंडिया हैज फेस्ड रिलेंटलेस टेरर अटैक्स फॉर ओवर 3 decades. These attacks have been sponsored by Pakistan. As part of its state policy, Pakistan has recruited, trained, equipped and assisted terrorists to undertake attacks in India through terror organizations, including Lashkar-e-Tayyaba and Jaish-e-Mohammed.

जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।